0: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट का वक्त खत्म हो चुका है। इस मुकदमे का फैसला अगले महीने की 18 तारीख को सुनाया जाएगा।
1: ओह, मेरे कत्ल की पूरी तैयारी कर ली तुमने।
2: तुम भी कातिल, हम भी कातिल। अब वक्त जाया मत करो, अपने जिस्म को इन कपड़ों की कैद से आजाद कर दो। तुम्हारी जवानी की किताब को करीब से पढ़ना चाहता हूँ।
3: रेडिएशन, द नंबर वन स्टेशन फॉर द पागल एशियन। पागल एशियन,
4: व्हाट द, यू ऑलवेज से no one has sent in or referenced a line more pervy or lecherous than that one. That's what I'm trying to say. And you know, you can go to the Punjabi butchers, whatever it is, if you eat meat in a restaurant, and you know there's always someone horny there, yeah? Right at the end, like, looking over, oh, looking at your girlfriend, whatever it is, man, it's just too much. Anyway, Mukaddama, Jazzy B, Sukhchindra Shinda, Local Attraction. And Radiation, the number one station for the Asian invasion. Let me hit you with this, yeah. Brain is fully firing up. It's Diary by Badam. Here we go.
3: Radiation, the number one station for the Pagal Asian.

0: My mom got me a calculator.
1: आखो एमी जे कैलकुलेटर नहीं सीखा आ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर
0: सीखा
1: बड़ी प्रोफेशनल थिंग मैं दो तीन महीने वास्ते मंगदा सीखा चंगी तरह मानो तंग करदा मानो पता सीखा मेरी आदत नहीं चीजा मंगनी जो तो माँ ने मैंने इतना बड़ा तोहफा दिता कैलकुलेटर मैं फटाफट जाके उन्होंने जप्पी मारी पता उन्होंने की किता
0: वो
1: वापस मैंने जप्पी मारी हमेशा मैं सोचता सी मेरी माँ मैंने प्यार नहीं करती मेरी छोटिया पैरों हमेशा जप्पियां मारती सी पर मैनू नहीं
2: I told my girl I was on radiation.